0: भीमको सम्झनामा व्रत बस्ने र भीमको पूजा आजा गर्ने गर्छन्। थप खबर गीता चौधरीबाट।
1: थारू समुदायमा अटवारी पर्व मनाउने चलन छ। खास गरी थारू समुदायले कृष्ण जन्माष्टमी पछिको शुक्ल पक्षको पहिलो आइतबारको दिन व्रत बसेर यो पर्व मनाउने चलन रहेको छ। आइतबार भएको घटनालाई सम्झेर मनाउने भएकाले यो व्रतलाई अटवारी भनिएको यसका जानकारहरू बताउँछन्। अटवारी पर्वमा भीमको पूजा गरिन्छ। आइतबारको दिन भीमले थारू समुदायलाई ठूलो गुण लगाएको सहयोग गरेको सम्झनामा थारू समुदायले यो पर्व मनाउने गरेका छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सह प्राध्यापक डाक्टर नाथुराम चौधरी,
2: विशेष कही के थारू समुदाय के महान पर्व अटवारी में भेवा के पूजा कई जाए। भेवा का लेख पांच पांडव मनिक एक ठो भेवा भीम है जान जाए। थारू समुदाय के खास एक ठो विशेषता का बकले से थारू समुदाय के सुख शांति समृद्धि सुरक्षा में जेकर गुण लागल रहत ओकर पौराणिक काल से नहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा पूजा पाठ कैना चलन देख जाए। ओस्टे के भेवा के फिन थारू समुदाय के सुख शांति समृद्धि और सुरक्षा में बड़ा भारी गुण लगेले बाटे कना विश्वास बा। थारू समुदाय के राजा दंगी शरण के पाला में जब दुश्मन के आक्रमण हुई उ बेला भेवा के सहयोग में उ दुश्मन हुकन पराजय हुईल रहे कना विश्वास बा। उ दिन भाद्र शुक्ल पक्ष थारू में भाडों के ओजरिया के पहिल अटवार परल रहे तभी मारे से उहे दिन से उहे अटवार से भेवा के गुण के सम्मान के लग व्रत बैठना उपासना कैना चलन चलती आयल बा। और दोसर दिन अपन चेली बेटिन अग्रासन दई के ई व्रत है समापन कैना चलन चलती आयल बा।
1: अटवारी को अगिलो दिन थारू समुदायले दर खानको लागि माछा मार्न जाने, पिठो पिसाउने, दुना टपरीका लागि जंगलमा पात टिप्न जाने, दुना टपरी लगाउने लगायत अन्य तयारी गर्ने गर्छन्। अटवारी पर्वमा राति व्रत बस्ने व्रतालुहरू दर खाने चलन रहेको जानकी गाउँपालिका आठका रेशमा चौधरी बताउनुहुन्छ।
3: पिठा पिसाई दी था तेल फेपे रही रोटी पकाएगला तब तैयारी कर था आगक दिन अनिरा के डर खही तब बहन के बर्त बैठ ही रही तब के रोटी पकही तब रही तब खही तब दूसर दिन अग्रासन दे दी था।
1: व्रत बसेको दिन व्रतालुले घर को एक कुना बहरीमा लिपोट गरी रोटी पकाउने गर्छन्। रोटी पकाउँदा पहिलो पटक हालेको रोटी नचलाइकन एक तर्फी पकाउने चलन रहेको छ। जुन रोटी भीमलाई चढाउने पूजा गर्ने गरिन्छ। रोटी पकाइसकेपछि साँझतिर व्रतालुहरू नुहाएर पकाएको रोटी, फलफूल, केरा, स्याउ, दही, काँक्रा लगायतको खानेकुरा आफ्ना दिदी बहिनीको लागि छुट्याएर पूजा गरेर खाने गर्छन्। जानकी गाउँपालिका आठका मन्तुर्नी चौधरी,
4: पुरान चुल्हारोटे परतना अटवारी वही नहीं पिलते थे वहाँ वस्ते खाए बिना पिलते ल तो हमारे से एक कर पके लग रोटी वही अलग धर परल तीन धर है परल ना अलग पत्तम ढेदार परल पता हो रही थी भूखला रही तो पकाई बन रही सहा दाई रह सहा दीदी रह सहा जी है भूखला भर रहा परल रोटी पके ना मने अब पूजा पूजना मने पूजी का हूँ पटरी लगा रहे तो पटरी में कहारी पुष्प पास किसे कहीं तो ना अगर इधर ही आगे में आगे ढल रही पानी पर सही भाग लगी और अब दिन में तो उसे फिर दख थे धूप बत्ती दोस्तों कुछ कैसे कहें दोस्तों अपन दी दिन रहे तो दी दिन के लग बाबू रहे तो बाबू के लाना छुट्टी ही पत्ते होते माँ पटरी रहे तो पटरी माँ ना की पत्ते मर छुट्टी ही घर आए।
1: व्रत बसे को अर्को दिन बिहान विभिन्न किस्म का परिकार गेडागुरी पकौड़ी पौई को साग लगायत गरी तीन पांच व सात थरी का तरकारी पकाने चलन रहेको छ। यसरी पकाई सके व्रतालुहरू फेरी नुहाई धुआई गरी आफ्ना दिदी बहिनी को भाग छुट्याएर पूजा गरिसकेपछि खाना खान्छन् र व्रत सकाउँछन्। खाना खाइसकेपछि अग्रासन दिन जाने चलन रहेको छ। दाजुभाइले आफ्ना दिदी बहिनीलाई अग्रासन दिन जाँदा दाजुभाइ दिदी बहिनी बीचमा माया प्रेम बढ्ने सद्भाव बन्ने विश्वास रहेको छ। जानकी गाउँपालिका छका टंक बहादुर चौधरी,
5: वहाँ दादू भैया समझला जैपुन के रही आईपुन के रही कहा समझना तो वहाँ दादू आई और भैया नहीं अरे भैया आई दादू आई कही के ना क्या बोली खाजा घर मुर्गी बात ये मुर्गी मारो माया तीर तो पर रहे थे बोले आशा हुई
1: थारू समुदायले यो पर्वलाई धूमधामका साथ मनाउने गरेका छन्।

0: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटो कपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
1: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पूर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
0: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868551000।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइस, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तू। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एल्विस एल्विरा टेरसमा हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा डिजाइन डिजाइनका साडी, सुट, कुर्ती, पलाजा तथा थानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला। एल्विस एल्विरा टेरस, सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली, संचालक सुजिता श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9811।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं सीख ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: टीकापुर नगर पालिका को सूचना नगरपालिका भित्र संचालित व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्न गराउनुका साथै दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका व्यवसाय अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ओडामा दर्ता गरौं। भवन निर्माण मापदण्ड 2072 अनुसार नयाँ घर निर्माण गर्दा घर नक्सा पास अनुमति लिएर मात्र निर्माण गरौं। यस टीकापुर नगरपालिका कार्यालय वरिपरि लगायत नगर क्षेत्रभित्र व्यवसाय गरी बसेका व्यापारीहरूले पसल अगाडिको सार्वजनिक जग्गा बाटोमा टहरा लगाई पसलको सामग्रीहरू राखी व्यवसाय गरिरहेको र त्यस्ता कार्यहरूले सड़क दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकोले त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरौं।
4: नगर क्षेत्रभित्र रहेका घुम्टी ठेलाहरू तथा पसलमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीहरूले आफ्नो पसलका अगाडि जथाभावी फोहोर गरी उचित व्यवस्थापन नगरेको देखिएकोले यथास्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गरौं र गराउं। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।
1: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
5: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
6: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
3: टीकापुर नगरपालिकाको अत्यन्त जरूरी सूचना जन्म मृत्यु विवाह सम्बन्ध विच्छेद र बसाईसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिनभित्र आफ्नो स्थायी ठेगानामा रहेको वडा कार्यालयमा गई अनिवार्य रूपमा दर्ता गरौं र गराउं। विद्यालय भर्ना गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राहदानी बनाउन नाबालक परिचय पत्र बनाउन बैंक खाता खोल्न तथा राज्यबाट प्रदान गरिने अन्य सेवा लिन व्यक्तिगत घटना दर्ता आवश्यक हुने भएकाले आजै वडा कार्यालय जाऊं। व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। नभुल्नुहोस् है व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिनभित्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौं जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिऊं। थप जानकारीका लागि टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाई र सम्बन्धित वडा कार्यालय।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उंकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब वे अपने खुकरी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। थारू समुदाय के ऐतवारी पर्व आज थारू समुदाय से व्रत बैठ के धूमधाम के साथ मनाईती। तीज के समय में चोरी हुईसेकना कहती नागरिक सचेत रहना प्रहरी के आग्रह। हरितालिका तीज शुरू आज दर खाके मनाईती। तीज मनाईना विगत के तरीका से ढेर समेत बडललक विष्णु देवी रावल के कहाई। टीकापुर में एक महीना से लगातार हथिया आतंक। वार्ड नंबर 2 और 5 के तमाम स्थान में नुकसान हो। टीकापुर में संचालित टीकापुर डांस आइकोनिक के सेमीफाइनल में ओरायल 15 जन प्रतियोगी फाइनल में प्रवेश। थारू समुदाय में ऐतवारी पर्व मनाई चलन बा। खास करके थारू समुदाय हुक्रा कृष्ण जन्माष्टमी पाचक शुक्ल पक्ष के पहल अटवार के दिन व्रत बैठ के ई पर्व मनाई चलन रहल बा। अटवार के रौलक ओर से घटना है समझ के मनाईना पर्व के ई व्रत है अटवारी कहना जानकार हुक्रा बटोईती बाट। अटवारी पर्व में भीम के पूजा करना चलन बा। अटवार के दिन भीम से थारू समुदाय हुकरन के भारी गुण लगाइलो। सय करलक समझना में थारू समुदाय ई पर्व मनाईना चलन चलते आयल बा। अटवारी के आगे दिन थारू समुदाय हुकरा दर खैनकलक मच्छी मार जैना पिठा पिसैना दोना टेपरी लगैकलक बनुआ में पट्टा संकलन कर जैना वही से दोना टपरी तैयारी करना चलन रहल बा। कलश अटवारी पर्व में रात के व्रत बैठना व्रताल हुकर दर खैना चलन रहल। जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 8 के रेशमा चौधरी के कहाबा व्रत बैठ के दिन व्रताल हुकर घर में एक कोनवा में बहरी में लिपोट करके रोटी बनैना उसका रोटी पकाई बेर पहल पटक समेत पकायल रोटी है नहीं चला के एक तरफी पकैना चलन रहल। और जोन रोटी भीम है समेत चढ़ना पूजा करना चलन रहल बा। रोटी पका सकल पाछे सांस के लंग बरताल हुकरा लहिना उसको पकायल रोटी फल फूल केरा स्याव दही खीरा लगायत के समेत खैना बात आपन दीदी बहिनिया हुकरन समेत केलक छुट्टायल और पूजा करके खैना। जानकी गांव पालिका आठ के मनटोनी चौधरी के कहेबा व्रत बैठलक और दिन बिहान के तमाम मेयर के परिकार गेड़ागुड़ी उसका पकौड़ी पकवान साग लगायत के करके 3, 5 वा 7 थरी के तरकारी पकैना चलन रहल बा। अस्त करके पका सकल पाछे बरताल हुकरा फिर से लहा खोरके अपन दीदी बहिनिया हुकरन के लाग भाग छुट्टैना पूजा करके खैना चलन रहल। बायो व्रत आपन समेत उकासन चलन रहल बा। अस्तक खास करके ई खाना खा सकल पाछे अग्रासन देह जैना फिर चलन रहल बा। दादू भैया और अपन दीदी बहिनिया हुकरन अग्रासन देह जाय बेर दादू भैया दीदी बहिनियन के बीच में माया प्रेम सद्भाव बढ़ना विश्वास रहल। और थारू समुदाय से ई पर्व है फे धूमधाम के साथ मनाई आयल बाटे। हिन्दू परम्परा अनुसार तीज के आगे दिन अर्थात दर खैना और मीठ मीठ परिकार खाके मनाईना चलन बा। हरितालिका तीज के दिन अधिकांश महिलाओं का व्रत बैठना और अपन रात के समय दर खाके बिहान के व्रत केलक ऊर्जा संकलन हुए कहना अभिप्राय से दर खैना चलन चलते आयल बा। परम्परा अनुसार आज दर के रूप में समेत दही खीर उसका मिष्ठान लगायत के विशेष परिकार समेत खैना चलन रहती आयल बा। असि के हरितालिका तीज में महिलाओं का निर्हर रह के भगवान विष्णु के पूजा आराधना करती उपासना में बैठना चलन रहल बा। तीज में विवाहित मेहरून का अपन दाम्पत्य जीवन सुखमय हुए पति के दीर्घायु हुए कहना कामना के साथ व्रत बैठना चलन बा। कलश अविवाहित महिलाओं के उत्तम वर के प्रतीक हुए कहना कामना के साथ व्रत बैठना चलन रहती आयल बा। प्रागपूर्व काल में गर्भवती हुकरा शिव है पति के रूप में पैना समेत कठोर तपस्या के करला कोर्से भगवान शिवा हे पति के रूप में पहला कथन लिखल बा। ये सतीज हे पार्वती से भगवान के शिवा हे प्राप्त करलक दिन के स्मरण में मनैना मान्यता रहती आयल बा। विगत में ओ अब समय डर खैना और तीज मनैना तरीका फरक फरक समय त्रलक समाजसेवी विष्णु देवी रावल के कहा रहल बा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीका प्रयत्न।
1: आंखा का रोगीहरूलाई अत्यंत जरूरी सूचना। नेपाल नेत्र ज्योति संघ गेटा आंखा अस्पताल र भजनी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भजनीमा यही असोज 3 र 4 गते आंखा शिविर संचालन गरी मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको शिविरमा नै निशुल्क अपरेशन गरिने र निशुल्क औषधि पनि उपलब्ध गराइने भएकोले आंखाका रोगीहरूले समयमा नै सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। विस्तृत जानकारी का लागि गेटा आँखा अस्पताल सम्पर्क नम्बर 091-575-204 स्वास्थ्य संयोजक कैलाश डंगौरा थारू सम्पर्क नम्बर 98-484-57-875।
2: यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
3: तपाईं एक्लो कहाँ छ श्रेया, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाई छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
2: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ
3: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त? जब म निस्के काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त? यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन, हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
2: ओहो, तैले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिछस् त यार। अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
4: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बावै। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 ओ 5 तमाम स्थान में हथियार से करीब 1 महीना से लेके नुकसान करते रह बा। 3 ठो के संख्या में रलक हथियार 2 ठो घर समेत भटका सकल बा। कलशित दैनिक रूप में धान केरा में खेती में नुकसान पुगे बा। टीकापुर नगरपालिका 2 शांति नगर टोल के साधु देवी सिंह हथियार 2 पटक आके घर भटकायलो। हथियार से घर भटकायल पाछे गोठ में बनलक 3 ठो गैया फे भगलक सुनायल बाटें। ओसकर टीकापुर 2 के ज्ञानु साई फे हाल भारत में रलक। वो आपन जेठिनिया के घर में समेत फे हथियार भटका सकलक। वो हैरान बनी रहल बटोले बाटें। शुक्रवार रात केल टीकापुर गौशाला में गैया क्लक चारा धरगिलक गोदाम के भित्ता तूर के मकई ओस्तका धान के भूसा खाके समेत नुकसान करल। सीतापुर के फूलराम चौधरी के खेतवा में नुकसान पुगेला। गौशाला के हेरालू सरिता चौधरी के कहायबा। स्थानीय टंक बहादुर बिस्ता से फे शुक्रवार के रात के समेत 8 बजे और 12 बजे लंग 2 पटक हथिया ऐलक भगैलक धान बाली में छिटी पुगैल सुनैले बाटें। बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज का 3 ठो हथियार समेत चर्के। कर्णाली किनार में रलक। ओ खोटेना भूराखानी सामुदायिक बनुआ में बैठी रलक। बनुआ के चौकीदार लक्ष्मण चौधरी से आगे वर्ष से फे 5-7 दिन बैठना हथियार ई पटक 1 महीना पुग लगला से फे नई छोड़लक सुनाइल बाटें। रात के समय में गांव में अलक हथियार घर भटकैना किसान के धान बारी नक्सान कर्णा अस्तक केराबारी नष्ट कर्तिरलाको यहाँके नागरिक पीड़ामा रहल स्थानीय नागरिक हुक्रा रात के समयमा आगी बारके भाँडाकुड़ा थथाके हथिया भकैना कर्तिरहल कर्मी राणाके स्थानीय सिंहराज बुढामगर जानकारी दिलेबाटै टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर दुई के वाड़ाध्यक्ष दीपक चौधरी वाड़ा कार्यालय के स्थलगत से मुचुलका बनाके नगरपालिका मनसे समेत वन कार्यालय सिफारिश करके पठैना करल बटुले बाटै टिकापुर क्षेत्रमा पाछक समयमा चोरीकी घटना बढ़ती बा कुछ मनै नैरलक मौका पाके घर के ताला फोरके घरबार चोरी करतिरलक पागिल बा साथे मन्दिरमा फेर समेत चोरी हुइतिरहल बा टिकापुर के ब्लक नम्बर 23 स्थित सिद्धेश्वर महादेव के मन्दिर के द्वार तुरके दान पेटिका के रकम समेत चोरी हुइलको कुछ दिन आगे टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 के ब्लक नम्बर 6-9 व्यावसायिक क्षेत्रमा लगायत के स्थानमा फेर चोरी हुइल बटागिल बा असिक दैनिक एक दो स्थानमा चोरी हुइतिरलको यहाँ के नागरिक हुक्रा से प्रहरी हे गस्ती बढ़ा देना फे आग्रह करती रहल बा इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर टीकापुर क्षेत्र के पास समय में छोट छोट समेत चोरी की घटना हुई रहलो अनुसंधान हुई रहल जानकारी करा गिल बा हरितालिका तीज पर्व लगे बेला यी बेला तीज मिलन कार्यक्रम होती बा तीज मिलन कार्यक्रममा महिला दिदी बहिनी हुक्रा दर खैना नाचगान कैना रमाइलो करना करलाको टीकापुर के तमाम संघ संस्था के फे समेत तीज मिलन कार्यक्रम करतिरलक एशियन लाइफ इन्सुरेन्स कार्यालय टीकापुर चे तीज मिलन कार्यक्रम करल बा भगवती कुमारी साउट के अध्यक्षतामा होइल तीज मिलन कार्यक्रममा एशियन लाइफ इन्सुरेन्स सुदूरपश्चिम प्रदेश के प्रमुख गणेश बहादुर साउत प्रमुख अतिथि रहलै कार्यक्रममा तीज के दर खैना कार्यक्रममा नाचगान समेत करगिल टिपेश प्रसाद देवकोटा जानकारी दिले बाटै टोकल समय भित्र वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नै सकलक अनुमति पत्र स्वतः खारेजमा पर्लक युनाइटेड टेलिकम यूटीएलमा सरकार के स्वामित्व स्थापित करगिलवा अनुमति पत्र खारेज पछि यूटीएल के दूरसंचार सेवा संगे सम्बन्धित सम्पत्ति फे समेत नेपाल सरकार के स्वामित्व हस्तान्तरण हुलक निकाय नियामक नेपाल टेलिकम प्राधिकरण से शुक्रबार जारी करलक सूचनामा उल्लेख करलबा प्राधिकरण के प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्याल से भदौ 24 गते के बैठल बोर्ड बैठक से एकर सम्बन्धी निर्णय करलको यूटीएल के सम्पत्ति स्वतः सरकार के हुलक बतागिलवा खोजखबरमा एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछ फेर से भी सुनते रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
6: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा एक नम्बर सुनबाट निर्मित माइली टिलरी छड्के टिलरी रामलीला झुम्का पिजडा झुम्का बाला औठी पेण्डल चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला
7: दुर्गा ज्वेलर्स बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर कैलाली सञ्चालक देव बहादुर सुनार सम्पर्क नम्बर 98-68-40-60
8: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकलमा जाइस् त
9: महिनै जाइ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलछु
8: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
9: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाए
0: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाग खुजली भुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाउ खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046477417।
1: श्री गणेश उत्सव समिति नारायणपुर कैलालीको भक्तजनहरूका लागि सूचना।
10: श्री गणेश उत्सव समिति नारायणपुर कैलालीको आयोजनामा यही भदौ 30 गतेदेखि असोज 5 गतेसम्म सञ्चालन हुने श्री गणेश उत्सव कार्यक्रम 2083 भव्य तथा सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण भक्तजनहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
1: श्री गणेश उत्सवका कार्यक्रमहरू।
10: गणेश स्थापना र उद्घाटन कार्यक्रम 2083 भदौ 30 गते दिउँसो 3 बजे।
1: भोटेकोसीमा आएको बाढीबाट ज्यान गुमाएका र सम्पर्क विहीनको लागि हरेक दिन शान्ति पाठ हुने।
10: विद्यालय स्तरीय नृत्य कार्यक्रम।
1: हरेक दिन भजन कीर्तन र नृत्य कार्यक्रम।
10: हरेक दिन बिहान योग कार्यक्रम।
1: विसर्जन कार्यक्रम असोज 5 गते बेलुका 5 बजे।
10: आयोजक श्री गणेश उत्सव कार्यक्रम मूल समिति टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 नारायणपुर चौराहा कैलाली।
0: विश्राम पाछ फेर से स्वागत बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार खगराज मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री खगराज भत्ता से सुदूरपश्चिम प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास करे पर्ना आवश्यकता रहल बटोले बाटन। कैलाली दुखबाजी संघ के 52 वार्षिक साधारण सभा के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भत्ता ऐसिन बटोले खोई। वहां प्रदेश मरलक संभावना और स्रोत साधन के उपयोग करती उद्योग तथा व्यवसाय उपकरण के विस्तार मार्फत रोजगारी सृजना और आर्थिक गतिविधि बढ़ना सरकार और निजी क्षेत्र बीच फेर समेत सहकार्य आवश्यक रहल बटोले बाट। मुख्यमंत्री भत्ता से प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र संगे सहकार्य करके आगे बढ़ना चाहल बटोले बाट। आयोजना संगे सम्बन्धित मुद्दा 90 दिन भित्ता टुंग्याई पर्ना करके सरकार के कानून बनैती आयल बा। यी तमाम पूर्वाधार न्यायाधिकरण एन बनैती आयल हो। कानून न्याय तथा सांसदीय मामिला मंत्रालय के अनुसार पूर्वाधार निर्माण के लग गर्जिना ठेक्का जग्गा प्राप्ति मुआवजा निर्धारण जैसिन विषय में अदालत में मुद्दा पर्ना हो। उपरक तह में समेत पुगे अंतिम किनारा लगैना समेत समय लग्न करल बटोले बाट। यमुना सुधार करे पर्ना करके मंत्रालय से पूर्वाधार निर्माण संगे संबंधित मुद्दा हेर्ना न्यायाधिकरण गठन करना करके एन बनैन लागल बटवागिल बा। नो भोट नो टिकट कहना नारा साथ टीकापुर में संचालित टीकापुर डांस आइकोनिक के सेमी फाइनल ओराइल बा। आइकोनिक में 156 जाने प्रतियोगी मध्य 54 जाने प्रतियोगी सेमी फाइनल में प्रवेश करल है। द क्राउन डांस एन जुम्बा सेन्टर के आयोजना में हुईलक सेमी फाइनल में 15 जाने प्रतियोगी फाइनल चरण में छनौट हुई। टीकापुर डांस आइकोनिक के फाइनल असोज 4 गते टीकापुर में हुईना। सेन्टर के संचालक अर्जुन विश्वकर्मा जानकारी दिलेबाट प्रतियोगितामा प्रथम हुइया 50,000, दोस्रो हुइया है 25,000, तेस्रो हुइना विद्यार्थी से बालबालिका हुक्रा 10,000, चौथो हुइना 5,000 नगद ट्रफी मेडल लगायत के तमाम अवसर प्राप्त गर्न कहलबा। यह समाचार संगे खोज खबर उराइल जहिना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। हरितालिका तीज शुरू आज दर खाके मनाइती तीज मनाइना विगत के समेत तरीका से फिर बदलल विष्णु देवी रावल के कहाई। टीकापुर में 1 महीना से लगातार हत्या के आतंक वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 5 के तमाम स्थान में नुकसान। थारू समुदाय के आइतवारी पर्व में आज थारू समुदाय से व्रत बैठ के धूमधाम साथ मनाइती। टीकापुर में संचालित टीकापुर डांस आइकोनिक के सेमी फाइनल ओराइल 15 जाने प्रतियोगी फाइनल में प्रवेश। लिटा बकलक थारू भाषा खोज खबर अत्रै। और समाचार 12 बजे मध्याह खबर सुन सकबी या बेके खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाक्रम सूत्र विराम
11: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा
12: असोज 3 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
11: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोग समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
12: डाक्टर आउने दिन असोज 3 गते पहिलो शनिबार
11: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825567772।
13: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं।
14: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
15: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
14: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
15: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
16: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmcticapur@gmail.com।

0: महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अरेल्ला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी, माइली तिलहरी, रानी हार, हार, मंगलसूत्र, चपकी, पेन्डल, बाला, औठी, चन्द्रमा, काँटा, नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
0: अरेल्ला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।
2: महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आरती ब्युटी एण्ड कस्मेटिकमा तीजको अवसरमा सौन्दर्य र श्रृंगारको लागि विभिन्न ब्राण्डका कस्मेटिक सामग्री पाइनुका साथै थारू गरगहना पाइन्छ र ब्युटी पार्लरको सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ।
3: संचालक आरती चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9864470483।
4: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना हुने न पट्टा नि पैना त
5: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
4: तुहार बाट अस्तरा तुहार रामपुरान दिदी ये नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बना कन्ल बाटी
5: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जाई कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चोक टिकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार।
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239161।
0: जानकी गाउँ पालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय के अनुरोध।
6: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडावासी दादु भैया दिदी बहिनी हुक्रे सड़क के किनार में पशु चौपाए नई बान देवी सड़क किनार में माल वस्तु नई कुरा देवी साथे सड़क किनार में पशु चौपाए बांध के ढुंगा बालुआ गिट्टी मल कुरा के दुर्घटना हुईले से एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुक्रा लेह पर्ना बा।
0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा कार्यालय लाइकपुर

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा के वस्त बाटिन गटिलो ठाउ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरा भर भर भर थी रहा
0: का हुई। कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं सीख ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन। ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुही।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई झोला उद्योग में। रट गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस गतिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस कटरास बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आज का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: और से बाहर नहीं निकल छू
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
0: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली हुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: ए भन्देखि सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन् त बाउ के पाउँछ त्यहाँ
5: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ
6: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि
7: त्यति मात्र होइन त्यहाँ त जस्मिन प्यान्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ
4: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ
8: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स
9: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स
10: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर
8: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा सम्पर्क फोन नम्बर 9844648673 र 9814680204

0: चर्पी भरगिल का करना हो का
1: चर्पी भर्न से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई में फोन करी आ बाक सरसफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौ कण्ठे टिकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लम्की मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सरसफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 98 6 56 92 0 26

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके संजेक 5 बजे थारू भाषा खोज खबरमा अपनौकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौक्रा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो मफी सुन्ती रहल बाटे। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। 30 मादल के ताल के संग लोक भाका हेरैटी लोक संस्कृति के संरक्षण कर लाग पर्ना जानकार हुकन के कहाई। कैलाली के तीन पालिका मन जेई विरूद्ध खोप अभियान 182,000 खोप लगाजिना। ओ भोटेकोशी बाढ़ी से विस्थापित हं सरकार मासिक रकम उपलब्ध करेना। आप खोज खबर विस्तार में। कौनो बेला तीस के अवसर में गांव घर में महिला पुरूष गांव के एक घर मन जमा होकन अंगन मन आंजर पांडर बैठकन मंद्रा के टालो लोक भाखा में छमछम पालै पालो रमैटी नस्लक देख पाजाए। तर पाचक समय पश्चिमा संस्कार के प्रभाव पर्कन मौलिकपन भाका बिर्सेटी गैल बाट आपन छुट्टी हुई बेर मादल के ताल मन दिग्दी बहिनी औक्र रमाइलो करती रमाइलो करलक अनुभव टीकापुर के सूर्य भट्टराई सुनैल बाट। पाचक समय तीज मन मादल के प्रयोग सुन्ना जसिन सुन्ना करीब कठिन हुईलबा वहां कल। खप्तर सांस्कृतिक परिवार केन्द्रीय अध्यक्ष तथा कलाकार नवराज रिवाल के अनुसार पुरान पुस्ता जसिकन तीज लगायत के संस्कार मनाईती आयल रह पुरान पुस्ता अस्टाइल संग लोक संस्कृति व मौलिक पन्फे अस्तैती गैलक वहां के कहाईबा। लौ पुस्ता में संस्कृति मनैना से फे धीर रमैना उहर आकर्षण भर्ती गैलबा। पुरान पुस्ता हस्तांतरण कर पुस्ता हस्तांतरण कर निशेकना ओ लौ पुस्ता पश्चिमा संस्कृति उहर आकर्षण हुईती गैलक से असीन समस्या आईलक वहां बटुलाबाट। तीस कलक पढ़ाई घर गैलक चेली हुक्र लैहर घर मन आका दाई दीदी बहनी होकन से आपसी भेटघाट व पढ़ाई घर में पैलक भोगलक दुख पीड़ा पोखना व आपन भोगाई गीत के माध्यम से सुनेना एक सांस्कृतिक परम्परा हो। तर जसी का पाचक समय तीज मन तीज के मर्म नई बिर्सेना कई का मादल व लोक भाका के सत्ता आधुनिक बाजा व एकदम वस्त किसिम के गीत में रमैना जुन प्रचलन बा यी से नेपाली लोक भाका प्रति पश्चिमा संस्कृति के प्रत्यक्ष प्रभाव पर्लक लोक संस्कृतिविद डाक्टर योगेन्द्र बचकाई बटुलाबाट। पाचक पुस्ता लोक संस्कृति व लोक मौलिकपन प्रति आकर्षण निहुना वो अनभिज्ञ हुईना हुईलक से पाचक पुस्ता नेपाली संस्कृति व मौलिकपन कसिन रह कना प्रति अन्जान रहुयाबाट। अभिभावक हुक्रफे आपन लड़का पर्का हुकन लोक संस्कृति सिखेना वो बुझेना जरूरी बा जी से लोक संस्कृति को मौलिकपन के संरक्षण कर सिक जैना लोक संस्कृतिविद डाक्टर बजगाई के कहाईबा। लोक संस्कृति व मौलिकपन कौनो फे देश समाज और समुदाय के पहचान हो आपन संस्कार संस्कृति व पहचान नई बिर्सेना हो कलसे कालिक दिन हुकन के पहचान हेरैती जाय उ हमारा लोक भाखा संस्कृति व संस्कार जोगैना लौ पुस्ता हस्तांतरण के संग जागरूक बनैना आवश्यक बा। कैलाली के तीन स्थानीय तह मन जापानीज एन्सेफलाइटिस जेई विरूद्ध के खोप अभियान संचालन हुईना हुईलबा। जेई संक्रमण दर भर्ती गैल पाछ स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली असोज 1 गति से खोप अभियान संचालन कर लगलक हो। शनिवार सम्पन्न जिला खोप समन्वय समिति के बैठक में स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली के प्रमुख रमेश कुंवर धनगरी उपमहानगरपालिका लम्की चोहा नगरपालिका व घोड़ाघोड़ी नगरपालिका मन अभियान संचालन करना जानकारी करेलबाट। स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख कुंवर के अनुसार घोड़ा घोरी व लम्की चोहा नगरपालिका मन असोज 1 गते से 7 गते सम्म ओ धनगरी उपमहानगरपालिका मन असोज 8 गते से 22 गते सम्म खोप अभियान संचालन हुईयाबा। अभियान अन्तर्गत 30 वर्ष वा उही से ऊपर के मनिहन जेई विरूद्ध के खोप लगाजेना बा। स्वास्थ्य कार्यालय के अनुसार धनगरी में 1,02,479 घोड़ाघोरी मन 39,059 ओ लम्की चोहा मन 40,555 कैकन कुल 182,313 जना खोप लगैना लक्ष्य ढैगिलबा। लक्षित जनसंख्या मध्य 1,399 जना महिला रहलबाट। अभियान के लाग 191,429 डोज खोप लगैना क्रम क्रममा रहलक स्वास्थ्य कार्यालय जनैलवा स्थानीय तह ओ स्वास्थ्य संस्था मार्फत खोप लगिनाकैक आवश्यक तयारी हुइतिरलक कार्यालयसे जनागिल्बा। लिगे कैलारी गाउँपालिका चारके किसान हेमन्त खरेल 11 वर्ष थेसी माछा पालन व्यवसाय कर्तियलबाट कृषि क्षेत्रमा कुश लौ कन्ना सोचकेसँग माछा पालन व्यवसाय शुरू गरभिलक उहाँक लागि अब यी व्यवसाय आमदानीके प्रमुख स्रोत बनलबा। विदेश जाक काम करल सेफे स्वदेशमा कुछ कर सेकजाइट कना योजना सहित माछा पालन व्यवसाय कर्ती ऐलक खरेल माछा पालन व्यवसाय से वार्षिक रूपमा 15 लाख बजेट कर्ती ऐलबाट उहाँ 12,000 लगानी से माछा पालन शुरू करलक बटोइटी हालसम्म करिब 50 लाख लगानी कर सेकलक जानकारी देलबाट आफ्नो जमीनमा 4 ठो भारे पोखरी निर्माण गर्क माछा पालन कर्ती ऐलक बटोइटी खरेल वार्षिक 65 लाख बराबर के कारोबार हुइना उल्लेख गर्नबाट सम्पूर्ण खर्च कटाकन वार्षिक 15 लाख जति बजेट हुइना उहाँके कहाइबा। माछा पालन मन लगानी के संग मेहनत ओ समय दिए परत मजा से व्यवस्थापन कर सेकलसे यी से परिवार के खर्च धन्ना कलक नाही मजा बचत फे कर सेकजाइट उहाँ कल। माछा पालन व्यवसाय के रेखदेख तथा हेरचाह के लाख 8 जना स्थानीय न उहाँ रोजगार देलबाट हुक्र मासिक तलब कलहक 1,52,000 रहलक हुकन उहाँ जानकारी देलबाट खरेलके पोखरीमा हाल ग्रास कमन क्राब रहु जलकपुर लगायत के जातके 300 क्विन्टल जत्रा मच्छीबाट मच्छी होलसेलमा प्रति किलो 300 वा खुद्रा प्रति किलो 350 के दरलेका बिक्री गर्दिएलक उहाँ बटिलबाट। पाछक समय यहाँके दक्षिणी सिमानाके कडाई करगिल पाछ अवैध रूपमा नेपाल भित्रैना भारतीय मच्छिन के आयात रोगिल पाछा बजारमा मच्छी के मूल्य फे स्वाचल अनुसार प्राप्ति हुइलक किसान खरेल बटुलबाट। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम पाछा एनएनबाटी सुन्दी रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछु भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होसिया गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड़ नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ।
2: जानकी गाउँपालिका 1 नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
4: सुन्नुहोस् न, यसपालि तिजका लागि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु।
5: हुन्छ नि, तर कहाँबाट किन्ने त?
4: अब किन टाढा जानु, सिर्चाना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
5: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
4: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
5: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
4: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
5: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
3: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
5: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 98095443893।
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा।
7: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
6: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
7: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
6: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
7: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
6: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
7: ईसीजी सेवा,
6: डिजिटल एक्सरे सेवा
7: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
1: फोन नम्बर 98484 27359 र 98482 43 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली, गुम्बा रोड, टिकापुर, जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
8: के तपाईलाई थाहा छ,
9: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
8: हो र?
9: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
8: अनि
9: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
8: के छ त विकल्प?
9: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
8: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
9: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
8: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
9: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
0: टिज मना मगर समुदायकी एकदमै गैना टिजके गीत भाका आजकाल लो फुइटी गेलबा। पुरान पुस्ताके समाप्ति व लो पुस्ताके उदय हुइल सँगसँग प्रविधिके विकासे यी टिजके भाका लो फुइल खुक्र बटुइलबाट। टिकापुर एक बनगाउँके सरस्वती पुन मगर हफे टिजके पुरान भाका लो फुइटी गेलकमा चिन्ता लागलबा। उहाँ आबके टिजके भाका एक ठोफे मन्नी परत, पहिलक भाका कसिक सम्झना पहिलक भाका चाहिँ एकदम सम्झलक बटुलबाट। बनगाउँकी असौकी घरती मगर हफे तीज मन डीजे लगाएका नस्नाका मन्नी परत। उहाँ फे पहिला आफ्नो गाउँ घरमा मौलिक भाका हन समझकन नस्लक सम्झना हुइलक बटुलबाट। लौ पुस्ताके हुइलसे फे विवेशा घरती मगर हफे टिजके पुरान भाका मन परत। उहाँ फे भाका गाई उही मन नाचौ मादल बजाई मादल बजाइ फ्याट। पुरान पुस्ताके समाप्तिके सँग लौ पुस्ता वाकर अनुसरण निकरबेर टिजके मौलिकता हेरैती गैलक देख जाइत। याका लागि सक्कु मगर समुदायके महिला हुँक र डीजे मननी होक मादलके तालमन टिजके भाका गाक नाचबेर मौलिकता झल्कना बटुलबाट। विपासा जस्तो अन्य युवा हुँक्रफे टिजके मौलिक भाका माया कर्के अनुसरण करलक खण्डमा टिजके मौलिकता जोगिना देख जायत। निहुइलसे टिजके मौलिकता एक देशके कठा जसिन हुइना देख जायत। गैलक भदौ 10 मन ऐलक विनाशकारी बारिशे विस्थापित भुइलक हुकनह सरकार सहायता रकम उपलब्ध करैना हुइलबा। गैलक बिहिबार बैठक मन्त्री परिषद बैठकसे भोटेको सी बाढ़ी प्रभावित परिवार हन थाई बास आवास निर्माण निहुइलसम्मके लागि आवास भाडा तथा अन्य आवश्यक खर्च व्यवस्थापनके लाख रकम उपलब्ध करैना निर्णय गलक संचार मन्त्री विक्रम तिमल सिन्हा जानकारी करैलबाट। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराज भट्ट श्रेष्ठ जोखिमपूर्ण हिमताल फुटाक सरकार आवश्यक तयारी फुटैना आवश्यक तयारी कटिरलक बटुलबाट। आइतबार संचार कर्मी हुकनसे बातचीत बटुइटी मन्त्री श्रेष्ठ विपद जोखिम न्यूनीकरण के लाग ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अब जत्रा उच्च जोखिममा रहलबा हिमतालके जल स्तर घटाई गृह कार्य कटिरलक जानकारी देलबाट। जोखिममा रहलक हिमताल ब्लास्टिङ कर्कन जल सतह पास गर्नकैक छलफलकैक आग्रह बढ़लबा। जोखिमपूर्ण हिमतालके पानी वैज्ञानिक हिसाबसे पास कर्क जोखिम युक्त बनाई परत। विपद जोखिमके पूर्व तयारीमा हाम्रो गम्भीर बाटी तयारी वराइल पाछ निर्णय लेने बाटी उहाँ कल। मन्त्री श्रेष्ठ कोन कोन ताल फुटैना कैकन टुङ्गो निलाग सेक्लक बटुलबाट। विज्ञ हुकनसे परामर्श लेटी बाटी छलफलमा धिउ टालके नाम विज्ञ हुकनसे आइलबा। अध्ययन कर्ती बाटी जोखिमके मात्रा हेरके पानीके सतह घटैना निर्णय लेलबाटी उहाँ कल। मन्त्री श्रेष्ठके अनुसार ग्रीन क्लाइमेट फण्ड से प्राप्त सहयोग परिचालन कर्क विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण व स्थानीय तह से मिल्क जोखिमपूर्ण हिमताल के पानी के सतह घटैना कार्य यह वर्ष आगे बढ़ा जैनाबा। ईसी मोड ओ यूएनडीपी के संयुक्त अध्ययन अनुसार नेपाल में 21 ठो हिमताल जोखिमयुक्त बा कोशी ओ गंडकी क्षेत्र के 4 ठो अति उच्च जोखिम हिमताल रहल बा। खोज खबर में फेरफे विश्राम पाछा निनीबाटी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
7: आंखा का रोगीहरूलाई अत्यन्त जरूरी सूचना। नेपाल नेत्रज्योति संघ गेटा आंखा अस्पताल र भजनी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भजनीमा यही असोज 3 र 4 गते आंखा शिविर सञ्चालन गरी मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको शिविरमा नै निशुल्क अपरेशन गरिने र निशुल्क औषधि पनि उपलब्ध गराइने भएकोले आंखाका रोगीहरूले समयमा नै सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ। विस्तृत जानकारीका लागि गेटा आँखा अस्पताल सम्पर्क नम्बर 091-575-204, स्वास्थ्य संयोजक कैलाश डंगौरा थारू, सम्पर्क नम्बर 98-484-57-875।
10: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
11: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो, देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
10: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
11: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
10: अब त म ढुक्क।
12: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
11: मोबाइल नम्बर 98-48-51-43-26। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
13: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा, टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
14: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
13: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू:
14: दीर्घ रोगीहरू, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, दम, सीओपीडी,
13: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा,
14: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार,
13: महिलाका समस्या, गायनोलोजिकल समस्या, गर्भावस्थाको जाँच,
14: सामान्य रोग, ज्वरो, खोकी, पेट दुखाई लगायतको उपचार,
13: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन,
14: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
13: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर।
14: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
13: सम्पर्क फोन नम्बर 98-68-80-0008 र 98-25-63-77-72।
0: खोज खबरमा फेरफे स्वागत बा। ऊर्जा प्रतिनिधि सभा मन महिला कर्मचारी तथा श्रमिकके लागि सुत्केरी विदाके अवधि 98 दिन से बढ़ाएको 6 महिना पुगेन। माग सहितके सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी सार्वजनिक प्रस्ताव दर्ता हुल्बा। नेपालके संविधान ओ स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून प्रत्याभूतको लग सुरक्षित मातृत्व प्रजनन स्वास्थ्य के हकन कार्यान्वयन कर माग गर्दै विपक्षी राजनीतिक दलके महिला सांसद ठोक्र यी प्रस्ताव दर्ता गर्ल फिट। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय से सम्बन्धित प्रस्तावक मन नेपाली कांग्रेसके सांसद सीता थपलिया समर्थक हुकनमा नेकपा एमालेके भूमिका लिम्बू सुब्बा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीके कलावती शर्मा, श्रम संस्कृति पार्टीके राधिका रमतेल ओ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीके सरस्वती लामा रहलबाट। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2073 के नियम 71 बमोजिम दर्ता करगिलक यी प्रस्ताव मन बच्चा पैना ओ पलना का महिला के कल हो कना सामाजिक सोच ओ राज्य के अपर्याप्त विदा के कारण धूर महिला हुक्र दाई बन्ना से बन पाछ हट पर्लक उल्लेख कैगिल्बा। प्रस्ताव म लिखगिल्बा विश्व स्वास्थ्य संगठन छ महिनासम्म दाइके डुटकलक खवाई सिफारिश करलबा सरकार अप्न सुनौलो हजार दिनके बात करत तर डाइन डेना विदा जम्मा 98 दिन कलकबा 98 दिनमा न कसिक छ महिना स्तनपान सम्भव हुई प्रस्तावमा नेपालके संविधानके धारा 38 के उपधारा 2 प्रत्येक महिला न सुरक्षित मातृत्व ओ प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक न मौलिक हकके रूपमा स्थापित करलक उल्लेख बा एक उहर सरकार छ महिना स्तनपानो सुनौलो हजार दिनके नारा लगैना औरौहर विदा जुनहोक अत्यन्त न्यून देना व्यवहारिक विरोधाभास के कारण महिलाओं कार्यस्थल व मातृत्व सम्बन्धी एक रजपना बाध्यात्मक अवस्था रहलक उहर से प्रस्ताव महुक्र लेखलबाट नेपालके प्रजनन दर घटकन 1.68 मन झलक उल्लेख कति प्रस्तावमा 2 सन्तान ईश्वरके वरदान कति ऐलक राज्य आब घट्दो जन्मदर जोगैना प्रभावकारी नीति लान निषेकलक दावी करगिलबा निजामती शिक्षण स्वास्थ्य बैंक तथा ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाके उपस्थिति बढ़ल सेफे विदाके अभाव मन धुर महिला हुक्र दाई बन्ना निर्णय मन ढिलाइ कटी रलक हुकनके प्रस्ताव मन लेख गिल्बा राजनीति मन सक्रिय रहलक महिलाके लागि त सुत्केरी विदाके कानूनी व्यवस्था नि हुइबेर हुक्र हाजिर निहुलक कारण हेरैलक सूचीमा पना व्यवस्था उल्लेख रहलबा अब 98 दिनके विदा पर्याप्त निहुलको यीसे दाई व शिशुके स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ति रलक बटोटी सांसद ठोकर संसद मन यी विषय छलफल के मुख्य एजेंडा बनैना माग करलबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र सुवाके भोटीकेसी लड्डेमा अहिलेक विनाशकारी बाढ़ीके वैज्ञानिक आधार र प्रमाण ख्वाज अध्ययनके प्रक्रिया आग बढ़ैलबा विनाशकारी बाढ़ीके उत्पत्ति तथा उहीसे जोरगिलक हिमाली भू जोखिमके वास्तविक कारण घटनाक्रम ओ जलवायु परिवर्तन के सम्भावित भूमिका बारे वैज्ञानिक अध्ययन करना ऊर्जा मन्त्रालय जनैलबा प्रवक्ता मोहन कुमार साके के अनुसार वैज्ञानिक अध्ययन के लाख मन्त्रालय सोमबार विज्ञ हुकन सहित के समिति गठन करलबा रसुवा विनाशकारी बाढ़ी केवल सामान्य बाढ़ी वा अतिवृष्टि के रूपमा नि होक उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुलक विभिन्न भौगोलिक हिमनदीय जल विज्ञान सम्बन्धी तथा अन्य जोखिम एक पाछ और रूपमा न जोड़ती विकसित हुलक सम्भावित श्रृंखलाबद्ध विपद के रूपमा अध्ययन करपना जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय के प्रस्ताव अनुसार मन्त्रालय वैज्ञानिक अध्ययन गर्न निर्णय कलक प्रवक्ता साक्य बटुलेबाट यो समाचारके सँग खोज खबर ओराइल अन्तिममा जैति खबरके मुख्य शीर्षक फेरसे तीज मना मादल के ताल के संग लोक भाखा हेरैटी लोक संस्कृति के संरक्षण कर सक्कुज लागपना में जानकार हुकन के कहाई कैलाली के तीन पालिका मना जेई विरूद्ध के खोप अभियान 1,82,000 खोप लगा देना ओ भोटे कोशी बाढ़ी से विस्थापित है सरकार मासिक रकम उपलब्ध करेना लिता आबकला थारू भाषा खोज खबर अत्रह 6 बजे नेपाली भाषा मना खोज खबर सुन सेक्बी आबक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती मई गीता फी विदा हुटू सामुदायिक रेडियो टीका पर एफएम सुन्ती रवि राम राम
3: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी लिमिनेसन प्रिन्ट ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ
5: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार्ट पुर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ
3: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी सम्पर्क नम्बर 9868551000
5: हरितालिका तीज 2083 तथा थारू समुदायकै महान पर्व अटवारीकै सुखद अवसरमा समस्त औडावासी दादु भैया ओ दिदी बहिनी हुकनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं सुस्वास्थ्यकै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गरती जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ए कार्यालय अमौरा कैलाली। हरितालिका तीज 2083 तथा थारू समुदायकै महान पर्व अटुवारीकै सुखद अवसरमा समस्त औडावासी दादु भैया औ दिदी बहिनीया हुकनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं सुस्वास्थ्यकै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गरती। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 के कार्यालय अमौरा कैलाली।
11: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
15: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
11: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाटा अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
16: यूपीबीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेष हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
15: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा की उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541326।
17: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: सबै बिरामी आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि त अपनाउनु पर्यो, तर यति हुँदा हुँदै पनि सबै एकलास कहाँ हुन्छ र? कहिले कोही बिरामी, कहिले कोही बिरामी, म त दिक्क भइसक्यो। कसो कालले छिटो नलाग्यो
3: होइन चाहिने जो माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेछ, के भएको छ हो तलाई?
2: हेर्नु न, साह्रै समस्या पर्यो क्या। कहिले के रोग आउने, कहिले के समस्या आउने, म त हैरान भइसकेँ। छोरो उस्तै बिरामी छ, स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ, बा त्यत्रै बिरामी, सबै हैरान भन्यो। म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ, भोक लाग्या लाग्या हुन्छ, खानै सक्दैन।
3: तेरी माइला, यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ? त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो। हजुर, स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्, साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्।
4: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर, ठकरौला रोड, टिकापुर, कैलाली।
5: आई हो बड्डो, घर कहिया सिज्जैब? पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
6: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का।
5: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनेला बाट, अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
7: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 9848541436।
8: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आत्मा त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
2: हरितालिका तीज 2083 तथा थारू समुदायकै महान पर्व अटवारीकै सुखद अवसरमा समस्त औडावासी दादु भैया औ दिदी भैया हुकनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं सुस्वास्थ्यकै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गरती। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कार्यालय अमौरा कैलाली।